होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी। पंजां प्यारिया चौहां साहिबजादिया चालियां मुक्तिया हठगां जपगां तपगां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अण डिठ कीता तिन्ना प्यारिया सच्यारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी। जिन्ना सिंघां सिंघणियां ने धर्म हित सीस दित्ते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया।

प्रणाम शुभ पावनावां पूरियां करनियां आप जी दे हजूर कड़ाहा प्रसाद दी दे गहादर है दर पर।

कंतन जपनी हरता के परावा आप कराए साक्षी फिर आप कराए मार एक ना गली जंजीरें एक तुरी चढ़े बिसिया आप कराए करे आप हो कैसे हो करी पुकार नानक करना जिन किया

आपे भांडे साजियां आपे पुरदे इक नी दुद्ध समाई इक चुल्हे रहन चढ़े इक ने हाली पैसे।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सपं गुर प्रसाद चक्र चहन अर बरन जात अर पात नहिन जे रूप रंग अर देख पेख को कह ना सकत के अचल मूरत अनपौ प्रकाश अमितोज कहिज कोट इंद्र इंद्राण साहे सहान गणिज त्रिपवन महीप सुर नारे असुर नेत नेत बन तृण कहत त्वय सर्व नाम कथा कवन कर्म नाम वर्णत सुमत जिह सतगुर सिमरंत नयन के तिमर मिट है खेना जिह सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जिह सतगुर सिमरंथ जी की तपत मिटावे जिह सतगुर सिमरंथ रिद सिद्ध नाव निद पावे सोई राम दास गुर बल पाण मिल संगत तन तन करहो जिह सत गुर लग प्रभ पाई सो सत गुर सिमरहो नरहो फुरमान तेरा सिर ऊपर फिर ना करत विचार तुही दरिया तुही करिया तुझ ते निस्तार बंदे बंदगी इकतियार साहेब रोस तरौ के प्यार नाम तेरा आधार मेरा ज्यों फूल जई है नार कह कबीर गुलाम कर का जी आए पावै मार अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम अपना तन मन होए निहाल जा गुर देखा सामने सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे आए गुरु का जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसम दी नूर अरसह कुरसह चटिया तुद डिठे सच्चे पाते सा माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पाते साहो सिर साहो जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसा
ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦੈ।

नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

संत पाछे परियो नानक दास संत पाछे परियो राख ले हूं एह बारी सत गोरी आयो शरण तुहां।

दिसै जत कथा नानक दसन दास दिया गै बिन बता श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत

सुत रहे काहे को तीर्थ जाई। पनत नाम देओ सुकृत सुमत पए। गुरमत राम कहे।

तेरा अंत न पारा वरिया। राग आसा महला चौथा, सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगम अगम अपार। सब त्याव है सब त्याव है तुद जी, हर सच्चे सिरजनहार। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातार। हर त्याव हो संत हो जी, सब दुख विसारण हार। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचार। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समान। एक दाते एक भेखारी जी, सब तेरे जोज विडाण। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बिन अवर न जान। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख बखाण। जो सेवह तुद जी, जन नानक तिन कुरबाण। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी, से जन जुग मह सुखवासी। से मुकत भय जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी। जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जी, तिन का भव सब गवासी। जिन सेव्या मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंत। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनक अनेक अनंत। तेरी अनक करह हर पूजा जी, तप तप है जप है बेअंत। तेरे अनेक पढ़ बहु सिमरत शास्त्र जी, कर किरिया खट कर्म करंत। से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंत। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड़ अवर न कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निःचल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करहै सो होई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जान ओई। आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैडा साई, जो तौ भावै सोई थीसी। जो तू देहे सोई हो पाई रहाओ। सब तेरी तू सवनी त्याया, जिसनों कृपा करहै तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल बिछुड़िया संजोगी मेल। जिसनों तू जाना एह सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने। जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए। तू कर कर वेखै जानह सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहल। तेत सरवरड़ भई ले निवासा, पाणी पावक तिन्ह किया। पंक जो मोह पग नहीं चालै, हम देखा तह डूबी अले। मन एक न चेत समूढ़ मना, हर विसरत त्या रहाओ। ना हो जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म भया।
प्रणवत नानक तिन की सरना जिन तू नाहीं विसरिया। आसा महला पंजवा भई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की एह तेरी वरिया। आवर काज तिर कित न काम मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग भव जल तरण कै जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ। जा

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह। पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपई। हमरी करो हाथ द रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतपार। हमरे दुष्ट सवै तुम काव हो, आप हाथ दे मोहे बचाव हो। सुखी वसै मोरो परिवार, सेवक सिख सवै करतार। मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन को आज संघरिए। पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है शाड कोई अवर न त्याऊं, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिय है, चुन चुन सत्र हमारे मारिय है। आप हाथ दे मुझे उवरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हूजो सदा हमारे पच्छा, सिरियस तुझ जो करिय हो रक्षा। राख लिहो मोहे राखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप धरा, काल पाए शिवजू अवतर। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जच्छन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझ यहो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मो बद कियो। घाट घाट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचरी असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब उदकरख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपार। जब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनमानत, महामूढ़ कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, किह बिद सजा प्रथम संसार। एकै रूप अनूप सरूपा, रंक भयो राव कही भूपा। आंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर अकैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव, आदि जुगाद स्वरूप सुजंपव। आव रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दोष्ट जिते उठवा ते उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत है मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताके काल निकट नह है। रक्षा होए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला।
कृपा दृष्ट तन जाहे निहार हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध करमो सब होई, दुष्ट शह स्व सकन कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांसते ताहे उवार। जिन न

सवैया पाए गहे जावते तुमरे तावते को आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सवै बहु भेद कहें हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन बजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां शब्दो तां गावहु हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारण अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारण सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनह वसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाहीं घर तेरे घर तां तेरे सब किश है जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नाहीं घर तेरे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दियाँ इह वडियाइया कह नानक सुनहो संत हो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो बाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द बाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंट कमारिया तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ तित घर।

हे गुरु बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी। वाहे गुरु बोलो जी। प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी का वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चित आवण का सदका सर्ब सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रक्षिया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की बैज पंथ की जीत। श्री साहेब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी। वाहे गुरु बोलो जी। सिखा नु सिखी दान के सुदान रहत दान। बाबेग दान वसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बूंगे जुगो जोगी अटल। धर्म का जयकार बोलो जी। वाहे गुरु बोलो जी। सिखां दा मान नीवा मत उच्ची मत पत दा रखाप। वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जीओ। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान। खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणियां दे माण नितणियां दे ताण।

साहिब जी जो हम बांधे मोह फास हम प्रेम बदन तुम बाधे अपने छूटन को जतन करहु हम छूटे तुम आराधे जो हम बांधे मोह फास हम प्रेम बदन तुम बाधे अपने छूटन को जतन करहु हम छूटे तुम आराधे माधवे जानत हो जैसी तैसी अब कहाँ करोगे ऐसी रहाओ मीन पकर फांकियो अर काटियो रांद कियो बहबानी

आपन बाप नाही किसी को पावन को हर राजा मोह पटल सब जगत ब्यापियो भगत नहीं संताप कह रविदास भगत एक बाड़ी आव इह कास्यों कहिए जा कारण हम तुम आराधे सो दुख अजहु सहिए कह रविदास भगत एक बाड़ी आव इह कास्यो कहिए जा कारण हम तुम आराधे सो दुख अजहु सहिए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिख बिख खाई, माया मो परम पै भूले, सतदारा स्यों प्रीत लगाई, इकी उत्तम पंथ सुन्यो गुर संगत, ते मिलंत जम त्रास मिटाई, इक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राख शरणाई, इक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राख शरणाई, सुख टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसया गुरु का, जन्म मरण दुख जाए, होवे सिफत खसामदी, नूर अरसोह कुरसोह चटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी है, सज्जन सच्चा पातशाह, सिरशाह दशाह, जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावी साहो, सज्जन सच्चा पातशाह, सिरशाह दशाहो, जिस पास बैठिया सोहिया।

संतः मन पवन सुख बनिया किस जोग प्राप्त गनिया संतः मन पवन सुख बनिया किस जोग प्राप्त गनिया रहा गुर दिखलाई मोरी जित मिर्ग पड़त है चोरी।

संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो। जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो।

अकाल मूर्त जुनि सह पंगुर प्रसाद असा महला पहला। वार श्लोकां नाल श्लोक भी महले पहला।

कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपा।

सच ता परजाणी है जा सच धरे प्यार नाउ सुनमन रहसी है ता पाए मुख द्वार। सच ता परजाणी है जा जुगत जाने जियो तरत काया साधक विच दे करता पियो। सच ता परजाणी

0: सुनावे जिनकी लिखे पत पवे चंगे से के पौड़ी
1: करम जना को दूध पाया तो निख सुनते आया इन्ना जनता के बस किस नाही तुद वे कीचक तू पाया एक नानू तू मेरे लह का पुत खवाया गुर कृपा ते जाने जिथे तुद आप बुझाया सहजे सच समाया सहजे सच समाया।

पहला दुख दारु सुख रोग पे आ जा सुखताम न होई, तू करता करना में ना हिजा करी ना होई, भले हरी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ। जात में जो जोत में जाता कलकला पर पूर है, तू सच्चा साहिब सिफत स्वालियों जिन की तीसो पार पया।

हथ त परस के अथ हथ लगह गुर अमर पै जी त परस के अथ जी गुर अमर पनीजै नैन त परस के अथ नायन गुर अमर पखीजै सरवन त परस के अथ सरवन गुर अमर सुनीजै सिक्यत सोहियो जित ही बसा गुर अमर दास निज जगत पित सिक्यत सो सिर जालप भनै जो सिर निवै गुर अमर नित।

0: नर स सहस समप ते नर दुलिच बह ते नर उथप बिथप सुख लहे ते नर संसार मह अप पट रिप मद ते सकियथ ते नर जालप पण गुर अमरदास सो प्रसन्न जे
1: ऐ पढ़ियो इक मन धरियो इक कर इक पछाणियो नैन बैन मोहे इक इक दोए ठाए न जानियो सुपन इक प्रतख इक इक असमे लीनो तीस इक अर पंज सिद्ध पैतीस नाखीनो इको जे लाख लखो अलख है इक इक कर वरनेओ गुरु अमरदास जालपने तू इक लोड़ है इक मनेओ
2: गुरु अमरदास परसिए बो हम पाठक में नासे गुरु अमरदास परसिए सिद्ध साधे का सासे गुरु अमरदास परसिए ध्यान लहिए पौ मुके गुरु अमरदास परसिए अपाओ लब्बे गौ चुके एक बिन दुगन जो तौर है जास मंत्र मान वेल है जाल पाप दारथ तड़े गुरु अमरदास डिठे मिले
3: सच नाम करतार सोदड़ नानक संग रहो ताते अंगद लहना प्रगट तास चरने लिव रहो तित कुल गुर अमरदास आसा निवास तास गुण कवन वखानो जो गुण लख अगम तिन्हें गुण अंत ना जानो बोथो बिधाते निर्मयो सब संगत कुल उदाहरण गुर अमरदास कीरत कहे त्राहे त्राहे तो पा शरण
4: गुर ज्ञान अर ध्यान तत् स्यों तत् मिलावे सच सच जानिए

0: देश हुक्म बुझ विचार पावै। कल माहे रूप करता पुरख सो जाने जिन कुछ कियो, गुर मिलो सोए पिखा कहै, सहज रंग दर्शन दियो।
1: सतगुर खेमा ताड़िया जुग जूत समाने, आन पौ निजा नाम टेक जित भगत अगाने। गुर नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने।